इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
0: वादिये लोलाब के दिल

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे सियू।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा अब।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।

0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM, एंड वी केयर फॉर यू।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू।
3: जरिया नहीं जांदी फ्रेंड मैं तो तेरियां।
2: आप सुन रहे रेडियो चना 90.4 एफएम, मैं हूं चक्सिस और मजेदार शो वॉसअप। जी हां, शो वॉसअप दोपहर के 2 बजे तक। आई एम हियर इन द स्टूडियो। दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार, सिटे धड़काते रहो।

हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: Zeus.
1: Kom on, ajo.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: जी दोस्तों, रेडियो चैनल 90.4 FM, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी. और वेदर, आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर.
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट.
3: जी हाँ, बांका ना हो पाएगा आपका बाल, क्योंकि आप सुनते हैं रेडियो चैनल पर मौसम का हाल. आज का वेदर क्या कहता है? जी हाँ, आज का वेदर होने वाला है सनी. एंड सनी के साथ साथ देयर आर चांसेस के बादल शाम होते होते थोड़े बहुत सूरज को ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूरज आज दिन भर फायर नहीं, वाइल्ड फायर बन के चमकेगा.
2: वेदर अपडेट.
3: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस. वही अभी की बात करें तो यू इंडेक्स मॉडरेट पर है. ह्यूमिडिटी 56%. विंड स्पीड अभी के लिए ना के बराबर यानी 0. विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स. 5:36 पर हुआ आज का सनराइज. आज का सनसेट होगा 7:22 पर. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM, मेरी जान सिरे हक

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
2: यहाँ दोस्तों रेडियो चुनार की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8999-04904 इज द नंबर और ये है व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन शो व्हाट्सएप और वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं ऐसी लड़की की जिसने दुनिया हिला दी। वैसे दुनिया तो हिला ही देते हैं लेकिन एक लड़की जिसने थ्रेड्स पर पूछ लिया कि गर्ल्स मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करती है क्यों, और ये सवाल ट्रेंडिंग में आ गया। उसके

बाद सब लड़कियां अराउंड द ग्लोब अपने पिक्चर्स पोस्ट करने लगे। आधो ने लिखा कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आधो ने लिखा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, आधो ने पिक्चर्स पोस्ट कर दी कि इस टाइम मैं ओटी में ऑपरेट कर रही हूँ, और किसी ने लिखा कि भैया मैं तो फौजी से, और इसी वजह से मैनीक्योर पेडिक्योर्स नहीं हो रहे। आधो ने लिखा मैकेनिक हूँ, गाड़ियाँ ठीक करती हूँ, इसी वजह से मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं हो रहा। और ये जो

0: मैं हूँ आरजे सियूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, लिटिल बाय लिटिल डे बाय डे वॉज मेंट फॉर यू विल फाइंड इट्स वे। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम। सिटी हक्ड धड़काते रहो।

0: Asha Zeus. कौन आया?
1: Zeus.
2: जी रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आरजेसियस के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप। जी मैं हूं जॉक्सियस, आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि एक नंबर जो प्यारा सा मेरे यारा सा, और नंबर जो आपके दिलों के कनेक्शन हमारे दिलों से जोड़ता है, 8899-04-904 इज द नंबर। 8899-04-904 नंबर तो याद पड़ती कॉल है क्योंकि व्हाट्सएप यह है क्योंकि टेक्स्ट मैसेज तो पाने का था इस तक हुआ तो नहीं। रेडियो 90.4 FM, शाकिर सुल्तान हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं भाई शाकिर तो मैसेज करते हैं लेकिन मैं वो वाला शाकिर नहीं बल्कि मेरा नाम शाकिर सुल्तान है, मैं श्रीनगर से हूँ। ऐप के थ्रू आपका रेडियो चुनार सुनता हूँ, मज़ा आता है। थैंक यू सो मच दोस्त सुनने के लिए और सुल्तानी दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच आखिर हमसे जुड़ने वालों के लिए। और वही अगर हम बात करें तो हमारे साथ साइमा शो का हिस्सा बनी है, बोलती है भाईजान बड़े टाइम से मैंने वेस्टर्न म्यूजिक में मैसेज नहीं की, सोचा यहाँ पर आज मैसेज करूँ, आपको बड़ा मिस करते हैं हम भी मिस करते हैं, तो कभी आओ प्रदारो मारे देश, आपका वेलकम है एंड गॉड ब्लेस यू, मिस करने के लिए शुक्रिया। रेडियो 90.4 FM, जी हाँ व्हाट्सएप शो, और व्हाट्सएप शो में आज बात होने वाली है ह्यूमन साइकोलॉजी की। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आज आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो मेमोरी रिकन्स्ट्रक्शन हो, चाहे किस तरह से आप पर नेगेटिविटी असर करती है, क्या है ओवरथिंकिंग और उससे रिलेटेड खतरा। मेहरबान कर दाना, आज बात होगी ह्यूमन साइकोलॉजी की। और फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको सुनाओ, सिरे हट दिल का तेरा।

0: किरणर
1: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सुन रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन। मैं हूं आपका साथी आरजे ज़ियाज़। जी हाँ दोस्तों, शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-0494 इज द नंबर। आप कर सकते हैं कॉल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज, अपने दिलों के हालात जज्बात हम तक पहुंचाए और हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चुनार की आवाज। व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो डीएम भी कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, सीधे हुक्ड मेरी जान, धड़का धड़का।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाजत लेना चाहेंगे। बता दूं आपको कि कुछ ही देर बाद अर्शदीपा आपसे जुड़ने वाली है। शो का नाम रहेगा चनार बीट्स। बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर, चनार बीट्स विद अर्शदीपा कुछ ही देर में। एंड दिस इज बाय-बाय साइनिंग अप फॉर द डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो चनार सुनते रहिए। टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

0: हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें।
1: हाय ऐसा ही हाल तू हमारा है, मिलने के बगैर हो जाता है कुछ बेहाल। और जब भी शो का टाइम आता है बस ये दिल जो है ये मानता नहीं कि सच में शो की टाइमिंग अभी अभी अभी ये है कि 12 से 2 तक मैं आपके साथ हूँ। शो चुनाव बीट्स बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM।

Jeremy. बीट्स ऑन रिपीट शो चुना और बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुना 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। वेल आई तो सुपर एक्साइटेड क्योंकि ढेर सारी बातें होने जा रही है। आज फ्राइडे है, डिवोशनल म्यूजिक हम आप तक पहुंचाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा इधर इज बॉस, कहीं नहीं जाने का, बस शो का हिस्सा बन जाने का और बताने का कि कैसे है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात। बिकॉज मैं अकेले कहूँ और ये सफ़र अधूरा हो जाए, लेकिन मुझे पूरा करना है और आप वो कहते हैं बनके शो का हिस्सा सुनाते हैं कोई मज़ेदार सा किस्सा, शो में आप मेरा साथ देते हैं और इस शो को और भी इंटरेस्टिंग।

वैसे मैं कहीं नहीं जा रही फिलहाल, दूर जाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिलहाल. अब एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चैनल 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. तो मेरे दोस्त जोरों से धड़का.

Star Beats with Harshi Deva, only on Radio Channel 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ढेर सारी बातें हो रही है और ढेर सारी बातें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर, जहाँ पर बहुत सारे से ट्रैफिक को अलाउ किया जा रहा है. आप जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं, जा सकते हैं, आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. बस वी हैव टू बी वेरी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि रास्ते में कई कई जगहों पर जो है मेंटेनेंस हो रही है ड्यू टू लैंड स्लाइड्स. कई कई जगहों पर रास्ता जो है कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है, और तभी उस गाइडलाइंस भी दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से. गाइडलाइंस दी गई है, उसके मुताबिक ही हमने अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन जो भी जहाँ भी हम जाना है उसके मुताबिक हमने प्लान करना है. सो इट्स आर ड्यूटी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है, ट्राई करना है कि हम एक दूसरे के काम आए, ना कि हमने ये सोचना है कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं और अपनी डेस्टिनेशन को, ट्रैवल डेस्टिनेशन को और भी मज़ेदार बनाएं. बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जीने का मज़ा तब आता है जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, और जब हम रियल लाइफ में हीरो बनते जीरो नहीं, तब हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते. एंजॉय कीजिए इस ड्राइव को. आप कुछ कहना चाहते हैं 8999049049 पर कॉल, टेक्स, व्हाट्सएप कीजिए.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: जुम्मतुल मुबारक, रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कुछ देर में, आप बस बने रहे हमारे साथ और हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं डिवोशनल म्यूजिक नातिया कलाम सूफी कलाम। आप बने रहे हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनाव और बीट्स आप सुन रहे होंगे और रेडियो चुनाव 90.4 FM और आज जुमतुल मुबारक है और जुमतुल मुबारक के मौके पर हम आपके लिए सूफ़ी म्यूज़िक, नादियाना कलाम और हर एक चीज़ आप तक पहुँचाते हैं। ट्राई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज में बिताए, दुआ करें और हम सबके लिए दुआ करें कि हम यूँ ही एक दूसरे के काम आते रहे। और ढेर सारी बातें तो हो ही रही है और फ़िलहाल के लिए चुनार बीट्स तो ख़त्म हो चुका है और शो म्यूज़िक ऑन डिमांड चल रहा है जिसमें आप अपने पसंदीदा नातिया कलाम सूफी म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसके लिए आपने 8899049904 पर कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूज़िक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए और याद रखिए आज आप अपने पसंदीदा नातिया कलाम सूफी म्यूज़िक सुन सकते हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

This is exactly that I wanted to say. That was Salam Namaste Kai Poche. Namaste. शो शुरू हो चुका है हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM, जहां एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। अब देखिए शो शुरू हो चुका है और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ तेज। अजी बोल तो रही हूँ, माई नेम इज असरा, आर जी असरा टू बी प्रिसाइज, और शो हंगामा ड्रामा एंटरटेनमेंट एवरीथिंग इज ओवर हेड। और आप कहाँ हैं? यहीं तो हैं, क्योंकि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8999049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं हॉरस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। मैं हूँ असरा, शो है हंगामा। तो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और कुछ ही ट्रैक्स के बाद बात करेंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में। 8999904904 इज नंबर, आई रिपीट, क्योंकि जरूरी है कि आप भी इस शो का हिस्सा बने। मैं हूं अस्ट्रा, शो हंगामा में बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: Jesus.
1: Hello, मैं हूँ RJ दीबा.
2: Hi, मैं हूँ RJ असरा.
3: Hi, मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स के बारे में। और आज का एक ऐसा ट्रैक है जो लोग रीपोस्ट कर रहे हैं लिप सिंकिंग डांस रील्स और स्पेशली कॉमेडी मीम्स में। कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक है दिख रहा है, और अगर पता चले तो ये जो ट्रैक है एक्चुअली इट्स 13 इयर्स ओल्ड, लिटरली एक डेकेड से ज़्यादा पुराना ये गाना है। रानी मुखर्जी और पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें कास्टेड हैं, और गाने का नाम है सवा डॉलर।
3: चढ़ाऊंगी बदले में
2: गाने की कहानी उतनी लाइक फैसिनेटिंग नहीं है, बल्कि मूवी की कहानी फैसिनेटिंग है। और सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि जिस तरीके से BTS या मूवी ये बनी है, इसमें लिटरली आर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं पूरे इंडिया के स्टेट्स के, एंड दैट वाज सच अ क्रेजी थिंग बैक देन। और रानी मुखर्जी की लाइक हर कोई परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बट इसमें एक डिल्यूजनल औरत का एक ये बनाती हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले करती हैं, and she plays it so well कि अभी तक ये रोल आइकॉनिक है। मैं मसरा सुनते रहिए रेडियो सुनार। अगर आपको भी कुछ कहना है या रानी मुखर्जी की कोई ऐसी मूवी है जो आपको बहुत पसंद है, जरूरी है कि हमारे साथ शेयर करना। मैं मसरा सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। शो है हंगामा एंड दिस इज द टाइम फॉर एन अपडेट, दैट इज रेलवे अपडेट। और जैसा कि अभी हर कोई टाइम टेबल जो है, हर कोई जो ट्रेन शेड्यूल्ड है, दैट इज अकॉर्डिंग टू समर टाइम टेबल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन में आते और डोरस्टेप आपको हर कोई रेलवे अपडेट, और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक्स नहीं, यानी कि बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन, कटरा, ये सारी रेलवे लिंक्स नहीं, बल्कि पूरे इंडियन रेलवेज का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेन बिटवीन स्टेशन हो या डिले अगर हो रहा है, या कौन सी ट्रेन लाइव लोकेशन कहाँ है, तो उस के लिए आपको डाउनलोड करना है रेल वन ऑफिशियल ऐप, चाहे आप iOS यूजर हैं या एंड्रॉयड यूजर। और रही बात एक और अपडेट की, एंड दिस इज़ नॉट एन अपडेट, दिस इज़ जस्ट एन इनसाइडर अबाउट वंदे भारत, जो एक्चुअली नाउ डायरेक्टली गोज श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। कटरा का कोई ऐसा मैंडेटरी स्टॉप नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेशन। एंड अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड अभी तक कि 4 घंटे और 20 मिनट लगते हैं कि पूरा जो जर्नी ट्रेवल करने के लिए। और रास्ते में 2 बड़े ब्रिजेस भी आते हैं, जो एक्चुअली बहुत, चिनाब ब्रिज की बात करें, दैट इज़ द टॉलेस्ट, लाइक हाईएस्ट लेवल फ्रॉम द लाइक सी लेवल से, दैट इज़ द हाईएस्ट सी लेवल रेलवे ब्रिज इन इंडिया। और अगर बात करें कि जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको वंदे भारत में, दैट इज़ कि आपको स्नैक्स भी मिलते हैं कुछ, एंड एवरीबडी इज़ टेकन, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, अलग से वॉशरूम्स हैं, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, एंड आई पर्सनली कांट वेट टू ट्रैवल विद वंदे भारत।

बिल्कुल नहीं, जोश तो हमारे नहीं है और आपको भी हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 4 बजे तक हम तो साथ में, अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और आज का क्या टॉपिक है वो कुछ ही ट्रैक्स ही बाद आप तक पहुंचेगा। पर अभी के लिए बस यही अपडेट है कि वंदे भारत इज सच अ गुड यूटिलिटी एंड सच अ गुड असेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: ओ देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो,
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: से।
1: देखिए हर दिन का एक खास टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज के बारे में हम बात करते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूजफुल जरूर होता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डू व्हाट यू लव कॉन्सेप्ट। हर कोई कहता है कि वही करना चाहिए जो हमारे हमें अच्छा लगता है या हम करना चाहते हैं, बट इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि कहाँ हमें अपनी विल, अपने जो जो अपना हमारा पर्सनल डिज़ायर्स होते हैं आई वुड से, या काम के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड, तो उन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी लव, वी शुड डू दैट। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या हमें ये करना चाहिए जो हर कोई इंसान कर रहा है, और जो फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए कि भाई इन्होंने किया है, सही प्लान है, इनको कोई हिंड्रेंस या कोई तकलीफ नहीं हुई, तो हमें भी यही करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, लोगों का क्या कहना है, या कौन सी ऐसी किताबें हैं या बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे इस बारे में पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ कहा गया है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा, और हमें भी बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं अस्ट्रा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे डू व्हाट वी लव कॉन्सेप्ट, और कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में हर कोई बात करता है. एक पॉइंट पे सब सोचते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में बस जाएंगे, कुछ ट्रैवल करेंगे, वील बी अ ट्रैवलर और हम दुनिया देखेंगे, हमें यही पसंद है. इसके अलावा कोई ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि नहीं, मैं मेडिकल में नहीं जाना चाहता, मैं नॉन मेडिकल में नहीं जाना चाहता, मैं तो आर्ट्स करना चाहता हूँ, या वैसा कुछ, या समथिंग दैट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द नॉर्मल वर्ल्ड व्हाट सोसाइटी शोज अस. बट बात यह है कि क्या वो सब करना सही है ऑन द लॉन्ग रन. और अगर बात करें इस बारे में कि कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है कि हमें ऐसा लाइक मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, हमारी जो मेंटल वेलबींग है वो सही रहे, और कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करें. कहीं ना कहीं जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं या पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज तक तो सब सही रहता है, बट एक पॉइंट के बाद जब हम जॉब करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है. यानी कि वही सेम डेली उठकर सुबह ऑफिस निकलना, ऑफिस पहुंचकर वहां काम करना, वापस आना, घर जाना, खाना खाना, सो जाना. बट अगर हम डीपर पर्सपेक्टिव पे देखें तो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर क्रिएटिविटी. सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि वी शुड डू व्हाट वी लव, ये बहुत सारे ऑथर्स ने भी लाइक अपनी किताबों में लिखा है. और कहीं ना कहीं व्हेन वी डू व्हाट वी लव, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, हमें ये चीज समझ आता है कि पूरी दुनिया ही आर्ट है, और हम इस चीज़ को इस तरीके से शोकेस कर सकते हैं कि हम अपने

0: आर्ट को, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो क्रिएटिविटी है, उसे हम अपने काम के द्वारा आगे पेश करें। और ज़रूरी है कि हम इस बारे में भी बात करें कि देयर इज़ एन ऑथर जो काफ़ी नोन हैज अ स्पिरिचुअल बुक राइटर, खलील जिब्रान। ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, बट उन्होंने एक अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखी है, दैट इज़ वर्क इज़ लव मेड विजिबल। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, हमारा जो प्यार होता है उस काम के प्रति, वो सामने आता है। और वही तो है, एवरीथिंग इज़ आर्ट, एवरीथिंग इज़ लव। एंड हमें जितना हम उस प्यार से, अपनी पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे, उतना ही वो काम और खूबसूरत होता है।
1: सुन बेखबरा दिल,
0: देखिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, और इन्फॉर्मेशन का डोज तो आपको मिल गया, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, बट बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा भी निभाना है। 8899-04904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और अभी की बात करें तो देर आर सम रियली गुड ट्रैक्स लाइंड अप। मैं हूं अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

हाय, मैं होस्ट और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, सुनते रहिए रेडियो चुनार। और देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी लव, वी शुड डू द सेम थिंग्स, बट अभी तो टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आप भी जुड़े, आपने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अब कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में, यानी कि गेम ऑन सेगमेंट जो कि कुछ देर बाद शुरू होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

देखिए आपको और मेरा साथ जुड़ा था बराबर 2 बजे और अभी 4 बजने वाले हैं। सो यू नो कि अभी क्या होने वाला है। सबसे आई गेस दुख होता है मुझे इस पॉइंट पे कि 4 बजते ही मुझे ऐसा लगता है कि ओके अब कल तक वेट करना पड़ेगा। और कल डेफिनेटली थोड़ी एक्स्ट्रा बातें ज़रूर होंगी क्योंकि कल सैटरडे है, रेडियो गर्ल्स स्पेशल शो। मैं हूँ अस्ट्रा, आज के लिए बस इतना ही। एंड जाते जाते बस यही कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और मेमोरीज बनाते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। मैं हूँ अस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि

0: वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चनौर से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।

नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना

0: अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दे
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: पंप अप द बगड़ा।
2: व्हाई नॉट
3: पंप अप द बगड़ा।
2: व्हाई नॉट यू वांट टू बिकम ऑफ द पॉप्स।
4: व्हाई नॉट यू वांट टू बिकम ऑफ द पॉप्स।
1: पंप

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

राती सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: याने याने याने प्यार हो गया
1: ओ मनु तेरा हुआ था।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल

0: डाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।